0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
5: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
6: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
7: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
8: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: South Mumbai. The first to attend the meeting, or as was already established, was Praful Patel and Sunil Tatkare. Now, their independent meeting with the Chief Minister was supposed to continue for at least an hour or an hour and a half. But then right in the middle of the meeting, from what we know, Jayant Patil also arrived at the spot, and that raised a lot of eyebrows. You see, Praful Patel or Sunil Tatkare meeting the Chief Minister in itself is not a surprising fact, considering that Chief Minister is the leader of Mahayuti in the state, and both of them are from the same alliance partners, same alliance in the state. But when Jayant Patil arrived, in that particular meeting, that becomes very interesting, because Jayant Patil meeting a top BJP leader is not an event that we should look at in a particular vacuum, because it has been happening for a while now, which means that there can be some sort of pattern to it. When the three leaders were there, Jayant Patil later, of course, confirmed that he was not there for more than 10 minutes. And as you've already said, he was only there to take or to talk about some work of his own constituency with the Chief Minister. But sources from the Ajit Pawar faction suggest that this particular meeting is more than a coincidence, considering that a late night meeting at Chief Minister's place, where top three senior leaders of NCP's rival faction been present at the official residence of the Chief Minister, is surely not just a coincidence. If Jayant Patil had to discuss any constituency related matters, he could have easily chosen the very next day. But why was that very day selected? On the other hand, Jayant Patil is also believed to have spoken to his own MLAs independently about the willingness to join the NDA. While we haven't received any sort of an official confirmation from NCP SP or Jayant Patil in specific, sources in and around NCP suggest that the talks of a merger or a talks of a possible alliance are pretty much on in the NCP faction. Back to the studio.
1: As always, Anuj, thank you so much for taking us through the insider details. The question is why these meetings have happened now, as Anuj highlighted, whether there was any coordination between them, and whether the political map of Maharashtra is quietly being redrawn before anyone's ready to say so publicly. We'll, of course, keep our eyes on all the finer developments and all that's unfolding behind the scenes. But in staying with updates from Maharashtra, you must note, less than a week after his arrest for allegedly assaulting two doctors and other hospital staff at a government hospital in Dombivli, Shiv Sena co-operator Ramesh Mahathre has now been granted bail. Mr. Mahathre was arrested after videos of the assault triggered widespread outrage and following NDTV's sustained scrutiny. But you know, soon after his arrest, as we covered, he was admitted to the civil hospital in Thane after his health was said to have deteriorated. A court has now granted him bail on a bond of 50,000 rupees, with his legal team arguing that his age and medical condition warranted relief. All right. Moving on to the other updates we're tracking this morning. Tahir Hussain's conviction in the Intelligence Bureau staff Ankit Sharma's murder during the 2020 Delhi riots has opened a fresh political battle. After leaders from the Aam Aadmi Party and the Congress gave cover fire to Tahir, Delhi Chief Minister Rekha Gupta has hit back, alleging political protection for Tahir Hussain and demanding accountability from the Aam Aadmi Party leadership. Meanwhile, NDTV has accessed the court order, which details Tahir Hussain's role in the murder and riots. The court found him liable as a member of an unlawful assembly. It said that the assembly had ill will against Hindus and aimed to cause damage to people from the community. The Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal have distanced themselves, saying that Hussain had actually jumped to contest for the AIMIM. Here are some crucial political reactions, I beg your pardon, you cannot ignore.
2: वो व्यक्ति जिसने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया, हथियार रखने का काम किया, अंकित शर्मा की हत्या का जिम्मेदार जिसे पाया गया, ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली की जनता का दोषी है, जिसने हजारों लोगों को पीड़ा दी और सैकड़ों लोगों की ने उसमें जान गंवाई, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं?
3: जो एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी परी हो जाता।
4: दिल्ली पुलिस या सरकार यहाँ भेदभाव कर रही है। कपिल मिश्रा ही दंगा भड़काए हैं और खड़ा होकर भड़काया था और पुलिस के सामने भड़काया था, तो उनका क्या हुआ? तो इस तरह का सरकार का रवैया है जो पूरा कम्युनल है वो पक्षपाती है।
5: बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो ये है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा।
6: अमानतुल्ला खान का बयान ये कहता है कि हमारे देश के न्यायालय ने साक्ष्य प्रमाण गवाहों की जो गवाही थी उसके बिना पे जो सजा दी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? न्याय से ऊपर अब अरविंद केजरीवाल हो गए।
7: आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो दिल्ली में दंगे हुए दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था, वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था।
1: ऑलराइट, कपिल मिश्रा हैज स्पोकन टू एनडीटीवी एज़ वेल। दिल्ली'स लॉ मिनिस्टर रिस्पोंडेड टू क्वेश्चंस ऑन द 2020 दिल्ली रायट्स एंड ही रिजेक्टेड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वायलेंस एज अ कम्युनल रायट, इवन दो He had been accused of delivering a hate speech before communal violence erupted in Northeast Delhi, claiming at least 42 lives and leaving over 200 injured during these riots. Those speeches were available online, but the law minister now says that he's rejected the characterization of this violence as a communal riot. Here's what he told Padmaja Joshi.
8: All right, and joining us on the show now, we have Delhi Law Minister Kapil Mishra, somebody who also, in fact, was very vocal at the time when the anti-CEA agitation, the anti-CEA protests were taking place in Delhi. Kapil Mishra ji, 6 years mein bahut kuch badal gaya, aakhirkar Ankit Sharma ke murder ka judgment bhi aa gaya hai, lekin sabse zyada charcha mein aap hi ka naam hai, kyunki Imran Masood keh rahe hain ki naam galti sirf Tahir Hussain ki itni thi ki uska naam Tahir tha, Kapil nahi tha. Kapil agar hota to wo chhoot gaye hote, bedaag hote.
9: अगर ताहिर हुसैन ताहिर नहीं होता, कपिल होता, तो अपनी छत पे पत्थर नहीं रखता। अगर ताहिर हुसैन कपिल होता तो बम नहीं रखता। अगर ताहिर हुसैन होता तो उसके घर में ताहिर हुसैन की जगह कपिल होता तो उसके घर में इतना बड़ा चाकू ही नहीं मिलता जिससे किसी को मारा जा सके। अगर ताहिर हुसैन ताहिर की जगह कपिल होता तो किसी के शव को नाले में फेंकने की हिम्मत ही नहीं होती। अगर ताहिर हुसैन ताहिर की जगह कपिल होता तो सड़कें बंद करने का पाप नहीं करता। और ये अगर इसमें पीछे तक जाएं तो अगर ऐसा हर कोई ताहिर कपिल होता तो राम मंदिर नहीं टूटता, मथुरा पे हमला नहीं होता, काशी पे हमला नहीं होता। अगर ऐसा हर कोई ताहिर कपिल होता तो कसाब के हाथ में बंदूक नहीं होती। अगर ऐसा हर कोई ताहिर कपिल होता तो 9/11 नहीं हुआ होता। इसके पीछे अगर चले जाएंगे जिस तरफ इमरान मसूद बात कर रहे हैं, तो अगर इमरान मसूद नहीं होता, अगर ये वाली जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं ये बदला हुआ होता तो
8: लेकिन
9: मुझे
8: कपिल
9: लगता
8: जी
9: है कि इतनी दूर तक ना जाए इमरान मसूद और इस किसी अपराधी को बचाने की कोशिश करना आज भी जब अपराध साबित हो चुका है उसके बाद भी केवल उसके धर्म के कारण उसके साथ खड़े होना, क्योंकि वो मेरे धर्म का है तो मैं उसको बचाऊंगा चाहे वो आतंकवादी हो जिहादी हो, यही सोच जो है यही सोच सबसे खतरनाक सोच है।
8: लेकिन कपिल जी बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, 2020 की बात कर लें तो आपके ऊपर भी इल्जाम था कि जो एक प्रो सीए रैली थी जाफराबाद में उसमें आप एक डीसीपी के बगल में खड़े होकर के लोगों को धमकाते हैं। आपने भी कहा था कि भाई 3 दिन की मोहलत देते हैं नहीं तो फिर जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। तो आपने जिस तरीके का अग्रेशन किया था आप तो छूट गए, आप कानून मंत्री बन गए, ताहिर हुसैन दोषी बन गया।
9: मैंने क्या एग्रेशन किया? मैंने सड़क खुलवाने की बात की और डीसीपी के साथ खड़े होकर बोली। क्या लोकतंत्र में पुलिस अधिकारी से यह कहना कि हमारी सड़कें खुलनी चाहिए यह किसी भी जनतांत्रिक आंदोलन का पहला कदम होता है? क्या इस देश में सड़कें बंद करना अपराध माना जाएगा या सड़क खुलवाने की मांग करना अपराध माना जाएगा? एक पूरे क्षेत्र के लाखों हिंदू परिवार, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बुजुर्गों की एम्बुलेंस नहीं जा पा रही थी, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा था, लोग अपने काम धंधे नौकरी पर नहीं जा पा रहे थे, चारों तरफ से सड़कों को बंद करके हिंदुओं का संघार करने की एक साजिश रची गई। और उसमें अगर कुछ लोग आके कहते हैं कि हमारी सड़कें खोल दो तो उनको आज 6 साल बाद भी उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जाती है। क्या मेरे घर की छत पर बम मिले क्या, पत्थर मिले क्या, एसिड मिला क्या, चक्कू मिले क्या? क्या ऐसे वीडियो नहीं है कि ताहिर की छत पर पत्थर और बम रखे थे? क्या वीडियो आज नहीं है आपके चैनल के पास या देश के किसी भी चैनल के पास? क्या वो वीडियो नहीं है जिन बस्तियों से, गलियों से और मोहल्लों से सड़कों को बंद करने वाली भीड़ निकली थी उन्हीं बस्ती

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality.

0: sexually assaulted as well. Now, which of course has not been fair enough that way, where you have now parents as well making similar allegations to saying he had to undergo mental pressure as well that way with what that the teacher has really said, has also led this boy to take up this extreme step as well. So yes, of course, the boy was then rushed to a hospital. He's still undergoing a treatment as well. The incident took place yesterday and has come to light today. Now, the police has taken up this whole investigation matter as well. The parents have filed a complaint too before the police. So the investigation is already kick-started in this whole in this matter. Needs to be seen what more shocking details that the police will be able to come out in terms of an investigation. Back to you.
1: Thank you so much, Ritu, for getting us the latest. And this is a very shocking incident that's come out from Bengaluru. Let's just switch tracks now to West Bengal. And nearly two decades, 19 years to be precise, after she was forced to leave Kolkata amid violent protests, is Bangladesh-born author Taslima Nasreen, who is set to return to the city of Kolkata. Nasreen will attend an anti-fundamentalism program that's going to be taking place on the 1st of August. The exiled writer had left Kolkata back in 2007 following protests over her writings, which critics allegedly said hurt religious sentiments. The BJP has welcomed this visit, calling it a matter of pride. The BJP leader Agni Mitra Paul says that a new Bengal would not bow before fundamentalist forces, and the TMC, however, has strongly criticized the stand that the BJP is taking. The TMC has alleged that the Bangladeshi writer was repeatedly spoken. She had spoken against the Muslim community, and that is the claim that's being made by the TMC, further claiming that the BJP supports people who are basically anti-Muslims.
2: আমি বলেছিলাম তসলিমা নাসরিনের কণ্ঠস্বরকে কেন বাজেয়াপ্ত করা হবে, তিনি তো ওখানে যে হিন্দু নিপীড়ন, যে অত্যাচার শিকার, তা নিয়ে তিনি লজ্জা লিখেছিলেন, সেই বই আবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাজেয়াপ্ত করিয়েছিলেন, প্রকৃত সত্য যাতে না আসে সেটাও করেছিলেন ব্লক ভোটের স্বার্থে। তা কোনো লেখিকা আসবেন এখানে, আমারই দাবি ছিল, তিনি আসছেন, স্বাগত তাকে।
3: आने का मौका नहीं मिला, नहीं बोलेंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, उनको इस्तेमाल किया गया, उनको फेंक दिया गया। लेफ्ट फ्रंट इतना मुसलमान को लेकर इतना बात करते हैं, लेकिन जब उनका किताब लेकर जो सच बात वो लिखे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको यहां से भेज दिया गया था। और टीएमसी गवर्नमेंट में तो हर धर्म के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, की हिंदू की मुसलमान। आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लिमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है, स्पेशली महिला होने के नाते। आज जिस तरह वो उनका लेखा में वो प्रतिवाद किए हैं हर चीज में, बहुत खुश है। उनका कार्यक्रम में हमको बुलाया जाए कि ना जाए, हम तो उपस्थित रहेंगे।
4: हिपोक्रेसी ऑफ द फ्री स्पीच इकोसिस्टम, संविधान बचाओ इकोसिस्टम। Taslima Nasreen, a noted author who has written extensively on the kind of persecution of Hindus that has taken place at the hands of Islamists in Bangladesh, is now returning to Kolkata. Instead of welcoming it, the TMC and the ISF and Congress put vote bank above even women's security or women's right to speak, and they are abusing her, threatening her, and they are saying that she should not be there, she should not be allowed. This is their intolerance. Just because she has written about the persecution of Hindus at hands of Islamists, they want to block her. They banned her books. They have abused her, heckled her.
5: देखिए, तस्लिमा नसरीन बांग्लादेश का राइटर थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, इस्लाम का, शरीयत के खिलाफ बहुत सारे कुछ बोला है। तो अभी जो मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे उसको तो डबल इंजन सरकार इज्जत करेगी, ये यार बोलने का दूसरा बात क्या है।
6: बीजेपी जो प्रॉमिस करके अभी सत्ता में आया, बोला था अन्नपूर्णा योजना के बारे में, बिजली के बारे में, या वुमेन सेफ्टी के बारे में, जो जो प्रॉमिस करके आया था, फेलियर है। अभी अभी तक भी फेलियर है। ये फेलियर को थोड़ा फेलियर के लेके आदमी को माइंड को डाइवर्ट करना होगा कि तस्लिमा नसरीन जो आएगा आके क्या बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ दो चार अनप शनप बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा, इसीलिए उनको लेके आ रहा है। उसको लेके आने से क्या फायदा होगा बंगाल में?
1: Shirshi joining us in order to get us details. Shirshi, we're hearing the kind of reactions coming out from the TMC saying that the BJP is only, you know, promoting this. This is, of course, Taslima they're taking to social media saying that she is returning to a free Bengal, and that's why she's coming back after 20 years.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
2: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
3: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
4: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
5: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now.

0: in her press conference that when they met Amit Shah, when Kiran Rijiju had called a meeting in which Amit Shah was also present and few leaders of other parties were also present. So in that meeting, Amit Shah has emphasized that only in across all the states from Kashmir to Kanyakumari, there will be an increase of only 50% seats. But Supriya Sule claims that when they got to know that in the fresh bill, there is no mention of the 50% cap. So in this case, they are not going to support the bill. They will be supporting the bill only if there is mention of 50% capping, then only their party will be supporting the bill. So this she has made clear through examples in her press conference. Vedika.
1: Thanks for joining me live. This, of course, will be our top political focus all day today, ahead of the monsoon session of Parliament. You have the centre warming up to other parties wanting that two-third majority, after which they will bring that bill to the House. All right, moving on now. A food row has erupted at Lucknow's King George's Medical University after the varsity banned cooking of non-vegetarian food items in hostels. The move came after the governor, Anandiben Patel, flagged concerns over non-vegetarian preparations on campus. Now, issuing a clarification, the medical university clarified that official messes never served non-vegetarian food, but private student-run messes were involved and strict action has now been ordered. Decision has triggered, of course, a political battle with the Samajwadi Party targeting the Yogi Adityanath government and calling the move, quote-unquote, an autocratic decree. The Congress too has hit out, accusing the UP government of trying to stop people from consuming non-vegetarian food. The BJP has hit back, saying institutions can decide their own food policies and one shouldn't politicize this incident.
2: AGMU campus mein kareeb 18 messes chalte hain. 18 hostel hain, usi hisab se unke mess chalte hain. Mananiya governor madam ne kaha ki उनको शायद दो या तीन मैसेज से कहीं पर उनकी टीम को ये न्यूज़ मिली कि वहाँ पर नॉनवेज पकता है और सर्व होता है. तो इस बात में तुरंत ही उनके कन्वोकेशन समारोह के बाद तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया गया ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम द्वारा. तो जो हमारी जितनी मैसेज है ये तो निश्चित रूप से क्लियर है, ना आज तक कभी नॉनवेज वहाँ बना है और ना ही कभी सर्व हुआ है, जो मैसेज केजीएमयू खुद संचालित करता है.
3: तुगलकी फरमान है वो तुगलकी फरमान जो लिखित नहीं है, मौखिक कहा गया है. और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन केजीएमयू उसका पालन करता है तो समाजवादी पार्टी समझती कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा, मन मर्जी से विश्वविद्यालय और प्रदेश को चलाने का प्रयास हो रहा है. और समाजवादी पार्टी आनंदीबेन पटेल के पिछले दो बयानों की और इस मौखिक बयान की भी निंदा करती है.
4: इस तरीके का लोगों के जीवन यापन में, लोगों के निजी जीवन में दखल देना, ये सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और किसी को भी कोई अधिकार नहीं है. भारत का संविधान सबको अपना अधिकार देता है, सबका मूल अधिकार है कि लोग अपने तरीके से रहें, अपने धर्म का आचरण करें, अपने हिसाब से खान पान करें. और विश्वविद्यालय प्रशासन जो सरकार के इशारे पर यह कर रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है. और ये देखिएगा, आने वाले समय में ये फैसला वापस होगा. लेकिन जो सरकार की मंशा है वो बार बार निकल कर आ रही है. उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लोगों के खान पान पे कौन मांस खाएगा, कौन वेज खाएगा, कौन नॉनवेज खाएगा, उस पर रोक लगा रहे हैं. लेकिन वो आखिर असम के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं रोक लगाते हैं?
5: देखिए, ये अलग अलग अलग अलग शैक्षिक संस्थानों की अलग अलग पॉलिसीज होती है और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे. तो अब ये तो उनका अधिकार भी है जो जो विश्वविद्यालय होते हैं कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें. अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं.
1: Moving to a very important story, the Supreme Court has come down heavily on controversial observations in sexual assault cases. The top court has issued a strong rebuke, calling them a reflection of total insensitivity and saying such remarks were unknown to the canons of law. Now, the criticism came after the Allahabad High Court's March 2026 order, which held that pulling a girl's pajama string and grabbing her breast did not amount to an attempt to rape. During another hearing involving the Patna High Court's July 2025 order, which said removing a woman's salwar and pressing her

0: Headlines. The state is gearing up for the annual chariot festival that will be observed tomorrow here in the state of West Bengal as well as Puri's Jagannath Dham in Odisha.
1: Bringing you all the updates tomorrow on that face-off, which is expected to continue between the Trinamool Congress and the BJP. Kunal Ghosh has also responded and reacted to the story. Listen in.
2: रथ यात्रा बंगाल में होता था, वो जो एलिगेशन बोल रहा है उसका कोई बेस ही नहीं है। और हर एक नॉट ओनली रथ यात्रा, हर धर्म का जो भी कोई स्पेशल डे होता है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सबको डब्ल्यू किया था।
3: तारकेश्वर के श्रावणी मेला में जो जो पुण्यार्थी जाएंगे उन का बारिश होगा।
4: स्वास्थ्य बीमा को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है।
2: आप देखिए, बंगाल में जनता के लिए गवर्नमेंट का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि हमारा ये स्टैंड था जो स्वास्थ्य शास्त्री ममता दीदी ने सबके लिए कर दिया था, 5 लाख तक ये फ्री। तो भाजपा बोल रहे थे आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत जो क्राइटेरिया है ये तो सबको नहीं मिलेगा। तो अब जब उसका गवर्नमेंट चलाया वो लोग बोला आयुष्मान भारत होगा। फिर ये असेंबली में एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आया जिसमें लिखा हुआ है जिस लोगों को आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा उसको ऑनरेबल सीएम का रिलीफ फंड से हेल्प किया जाएगा। ये तो और बड़ा कंफ्यूजन है। पॉइंट नंबर वन।
1: Staying with the state of West Bengal, nearly 2 decades after she was forced to leave Kolkata amid violent protests, Bangladesh-born author Taslima Nasreen is set to return to the city. Nasreen will attend an anti-fundamentalism program at Rabindra Sadan on the 1st of August. The exiled writer had left Kolkata in the year 2007 following protests over her writings, which critics allege hurt religious sentiments. The BJP has welcomed Nasreen's visit, calling it, quote-unquote, a matter of pride. BJP leader Agnimitra Paul has said a new Bengal would not bow before fundamentalist forces. The Trinamool Congress, however, has strongly criticized BJP's stand. TMC has alleged that Nasreen had reportedly spoken against the Muslim community and Shariat in Islam. TMC further claimed that the BJP supports people who make anti-Muslim remarks.
5: আমি বলেছিলাম তসলিমা নাসরিনের কণ্ঠস্বরকে কেন বাজেয়াপ্ত করা হবে? তিনি তো ওখানে যে হিন্দু নিপীড়ন, যে অত্যাচার শিকার, তা নিয়ে তিনি লজ্জা লিখেছিলেন। সেই বই আবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাজেয়াপ্ত করিয়েছিলেন, প্রকৃত সত্য যাতে না আসে সেটাও করেছিলেন ব্লক ভোটের স্বার্থে। তা কোনো লেখিকা আসবেন এখানে আমারই দাবি ছিল, তিনি আসছেন, স্বাগত তাকে।
6: आने का मौका नहीं मिला, नहीं बोलेंगे। उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, उनको इस्तेमाल किया गया, उनको फेंक दिया गया। लेफ्ट फ्रंट इतना मुसलमान को लेकर इतना बात करते हैं, लेकिन जब उनका किताब लेकर जो सच बात वो लिखे हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको यहां से भेज दिया गया था। और टीएमसी गवर्नमेंट में तो हर धर्म के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, की हिंदू की मुसलमान। आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लिमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है, स्पेशली महिला होने के नाते। आज जिस तरह वो उनका लेखा में वो प्रतिवाद किए हैं हर चीज में, बहुत खुश है। उनका कार्यक्रम में हमको बुलाया जाए कि ना जाए, हम तो उपस्थित रहेंगे।
7: द हिपोक्रेसी ऑफ द फ्री स्पीच इकोसिस्टम, संविधान बचाओ इकोसिस्टम, Taslima Nasreen, a noted author who has written extensively on the kind of persecution of Hindus that has taken place at the hands of Islamists in Bangladesh, is now returning to Kolkata. Instead of welcoming it, the TMC and the ISF and Congress put vote bank above even women's security or women's right to speak, and they are abusing her, threatening her, and they are saying that she should not be there, she should not be allowed. This is their intolerance. Just because she has written about the persecution of Hindus at hands of Islamists, they want to block her. They banned her books. They have abused her, heckled her.
8: देखिए, तस्लिमा नसरीन बांग्लादेश का राइटर थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, इस्लाम का, शरीयत के खिलाफ बहुत सारे कुछ बोला है। तो अभी

0: जो मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे उसको तो डबल इंजन सरकार इज्जत करेगी, ये यार बोलने का दूसरा बात क्या है।
1: बीजेपी जो प्रॉमिस करके अभी सत्ता में आया, बोला था अन्नपूर्णा योजना के बारे में, बिजली के बारे में या वुमेन सेफ्टी के बारे में, जो जो प्रॉमिस करके आया था फेलियर है, अभी तक भी फेलियर है। ये फेलियर को थोड़ा फेलियर के लेके आदमी को माइंड को डाइवर्ट करना होगा कि तस्लीमा नसरीन जो आएगा आके क्या बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ दो चार अनाप शनाप बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा, इसीलिए उनके लेके आ रहा है। उसको लेके आने से क्या फायदा होगा बंगाल में?
2: We're going to be slipping a short break. Once we come back, we will bring you the highlights from last night's semi-final, where Spain has now made it to the finals. All eyes will be on the match tonight to know who they play against. Also, we're going to talk about Odyssey, which is set to sail into theaters on the 17th of July. Both those stories coming up in moments from now.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
11: When markets close, clarity matters as much as speed.
10: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
11: Because the last start today gives you the head start you need tomorrow.
10: Join us before every closing bell
11: on India Market Close.
12: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
13: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
14: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
15: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज
16: Right, breaking news coming in on top of this news bulletin. NDTV Newsbreak has been confirmed. Janamayagan set to release on July 23rd. The countdown begins to the epic release of Janamayagan out on July 23rd, viewers. It's a huge relief coming in for Vijay and the fans of Vijay all across Tamil Nadu. There are likely to be celebrations and of course people who are fond of Chief Minister Vijay as an actor, as somebody who aces in his craft, and of course there are thousands of his viewers, his supporters who might be actually in a celebratory mode because after weeks and months of the entire status quo, the legal battle and the challenges that Vijay and his producers have had with this entire battle for the release of Janamayagan, finally the countdown begins for the epic release of Janamayagan. NDTV had first reported that on July 23rd, Janamayagan will hit the screens, and that's what is happening, is going to be

0: And well, we start off with some breaking news that's coming in on top of the show. We're talking about a man, his name is Raj Kumar, who bled to death outside a police station in Uttar Pradesh's Ghaziabad. We have the picture of that man on your screens right now. He's 22 years old and he had begged for help for 40 minutes to the police officials. According to eyewitnesses, the women police personnel stationed at the pink police booth got scared and they locked themselves inside the booth, perhaps not wanting to help Raj Kumar. Let's now tell you about the sequence of events as to what led to this incident. An auto rickshaw carrying 4 to 5 people, including the driver, drove straight to the pink police booth. According to the police and eyewitnesses, all of them were allegedly under the influence of alcohol. That's what the women police personnel have to say. A dispute had broken out among them over the auto fare. As per eyewitness, women police personnel present at the booth told them that it was a pink police booth and advised them to approach the nearby men's police station. Due to intense bleeding, he collapsed right in front of the police station, even if it was a pink police booth. A shopkeeper located next to the pink police booth then dialed 112 to alert the police. And according to the eyewitness, Rajiv, the police personnel on a motorcycle arrived first and tried to stop passing the auto rickshaws. Raj Kumar was then taken to the hospital, but he died. Take a listen.
1: सामने की तरफ देखिए आप, ये पुलिस बूथ है और पुलिस बूथ के ठीक बाहर 10 कदम भी नहीं होंगे ये जगह, और 10 कदम के ठीक बाहर जो है ये हादसा होता है, जहां पर एक शख्स की जो है दिन दहाड़े तकरीबन दिन के 2 बजे के आसपास जो है वो मौत हो जाती है। और इस मामले के अंदर परिवार जो है लगातार एलिगेशन लगा रहा है कि 72 घंटे से कोई FIR नहीं हुई है। यहाँ पर पुलिस के एक अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर SI साहब भी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? त्यागी साहब,
2: FIR इसमें हो चुकी,
1: FIR कर लिया है। परिवार बार बार एलिगेशन लगा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटती है,
2: इन्हें कोई लीगल जो है मैंडेटरी प्रोविजन थे उनके लिए बुलाया था पूछताछ के। FIR बहुत पहले,
1: इस मामले में कोई अरेस्टिंग हुई है? अरेस्टिंग हुई है?
2: देखिए, अभी इसमें जो है मुलजिमों की तलाश की जा रही है और जो भी उच्च अधिकारी कर रहे हैं, मैं जिसने दायित्व था उसके लिए आया। ठीक है,
1: अरेस्टिंग अभी तक एकाग भी हुई है कि नहीं हुई? 72 घंटे बीत चुके हैं,
2: अभी इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा।
3: हमें ये बताया जाए,
1: इसमें एक चीज़ है, पुलिस ये कह रही है,
2: मैं मीडिया से उतनी बात कर सकता हूँ, हालांकि मेरे मीडिया से बात करने का मुझे राइट नहीं है, बस इतना।
1: सिर्फ सीक्वेंस, एक सेकंड, कितना डिले कितना हुआ आपसे?
2: मेरे अधिकारियों से पूछिए बस,
1: हम उनसे भी बात करेंगे। हम सिर्फ इतना जाना,
2: मैं स्वतंत्र नहीं हूँ।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ पर पब्लिक है वो सिर्फ इतना जानना चाह रही है। आपके ठीक सामने ये परिवार है, वो एलिगेशन ये लगा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा।
2: मैं अधीनस्थ अधिकारी हूँ, मैं अपने अधिकारियों को बताऊंगा, मैं मीडिया से बताने के लिए स्वतंत्र नहीं बस।
1: देखिए, यहाँ पर जो आयो हैं उनका कहना है कि उनके पास जो है वो ऑर्डर्स नहीं है इस चीज़ को बताने के, लेकिन परिवार जो है, ये गमजुदा परिवार जो है, ये लगातार जो है इंसाफ की गुहार कर रहा है। इनका कहना है कि तकरीबन 72 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले के अंदर जो है अभी तक एक भी जो है अरेस्टिंग नहीं हुई। और
0: And I joining me live now is Akil, who's joining me live from the spot. Akil, what we're seeing right now is a shocking police apathy. That man named Raj Kumar was outside the pink booth police station, seeking, begging for help for 40 odd minutes, but the scared women personnel refused to come out and help him. Tell us where this, where the investigation is headed to, because like you also mentioned, no FIR, no arrest has been taken so far.
4: Well, Raisha, if you see the broad daylight at around 2 p.m., what we have seen that this unfortunate tragedy has come to light, in which what we have seen that from this very side of Bhapudam area, two individuals were coming in an auto, and after that there was a verbal altercation which started, and later on this turned into a physical altercation. And then what we have seen that in order to get some help, Raj Kumar just arrived at the police station. But if you see, this is a police booth, this is pink police booth, where what we have seen that Raj Kumar arrived over here, and he was a very scared 22 year old person, individual was very scared. He has started knocking this very door, and at that point in time no one came to his rescue. There were two police personnel who were present at that point in time, there were two women constable who were present.

0: है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये हमारी मांगे, लिमिटेड मांगे, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल।
1: अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
2: And shifting our focus to other news, Taslima Nasreen, she's all set to return to Kolkata. That's nearly after 20 years, after two decades. And this has led to a huge uproar in the state of Waterford, which has also erupted between the ruling party and the opposition, because she is returning after two decades. And Taslima Nasreen was forced to leave Kolkata amid violent protests. Bangladesh-born author Taslima Nasreen will be returning to Kolkata. And she will also attend an anti-fundamentalism program at Rabindra Sadan on August 1st. Well, the exiled writer had left Kolkata in 2007. That's following demonstrations against her and over her writings, which critics alleged hurt religious sentiments. The Bharatiya Janata Party has perhaps welcomed Nasreen's visit and also her return, calling it a matter of pride. BJP leader Agnimitra Paul said that a new Bengal would not bend before fundamentalist forces. The TMC, however, has strongly criticized the BJP's stand. TMC has further alleged that Taslima Nasreen has repeatedly spoken against the Muslim community and Shariat in Islam. TMC further claimed that the BJP supports people who make anti-Muslim remarks. This is perhaps her return has led to a war of words between the TMC and the Bharatiya Janata Party. Take a listen to all the reactions coming in on this story.
3: Abhi bole chilam, Taslima Nasreen er kontoshwar ki keno bajapto kora hobe. Tini to okhane je Hindu nipidon, je ottachar shikar, ta niye tini lojja likhechilen. সেই বই আবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাজেয়াপ্ত করিয়েছিলেন, প্রকৃত সত্য যাতে না আসে সেটাও করেছিলেন ব্লক ভোটের স্বার্থে। তা কোনো লেখিকা আসবেন এখানে, আমারই দাবি ছিল, তিনি আসছেন, স্বাগত তার।
4: অনেকা মৌকা নেই মিলা নেই বলেঙ্গে, উনকো প্রোটেকশন নেই দিয়া গিয়া, উনকো ইস্তেমাল কিয়া গিয়া, উনকো ফেক দিয়া গিয়া। লেফট ফ্রন্ট ইতনা মুসলমান কো লেকার ইতনা বাত করতে হ্যায়, লেকিন জব उनका किताब लेकर जो सच बात वो लिखे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको यहाँ से भेज दिया गया था। और टीएमसी गवर्नमेंट में तो हर धर्म के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, की हिंदू की मुसलमान। आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लिमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है, स्पेशली महिला होने के नाते। आज जिस तरह वो उनका लेखा में वो प्रतिवाद किए हैं हर चीज में, बहुत खुश है। उनका कार्यक्रम में हमको बुलाया जाए कि ना जाए, हम तो उपस्थित रहेंगे।
5: द हिपोक्रेसी ऑफ द फ्री स्पीच इकोसिस्टम, संविधान बचाओ इकोसिस्टम, तस्लीमा नसरीन, अ नोटेड ऑथर, हु हैज रिटन एक्सटेंसिवली ऑन द काइंड ऑफ पर्सिक्यूशन ऑफ हिंदूज दैट हैज टेकन प्लेस एट द हैंड्स ऑफ इस्लामिस्ट इन बांग्लादेश, इज नाउ रिटर्निंग टू कोलकाता। Instead of welcoming it, the TMC and the ISF and Congress put vote bank above even women's security or women's right to speak, and they are abusing her, threatening her, and they are saying that she should not be there, she should not be allowed. This is their intolerance. Just because she has written about the persecution of Hindus at hands of Islamists, they want to block her, they banned her books, they have abused her, heckled her.
6: देखिए, तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश का राइटर थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, इस्लाम का, शरीयत के खिलाफ बहुत सारे कुछ बोला है। तो अभी जो मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे उसको तो डबल इंजन सरकार इज्जत करेगी, ये यार बोलने के दूसरा बात क्या है।
2: ऑल Right, we have some breaking news coming in from Tamil Nadu. This is a huge action now taken against the TVK functionary who accepted rupees 1 lakh bribe, and a huge action has now been taken against him. His name is N.B. Veera, who accepted rupees 1.3 lakh of bribe. Of course, a war of words erupted over TVK and their corruption drive. This, of course, after the Chief Minister's clarion call against corruption. I want to go across to my colleague Vijay for more on this. Vijay, while DMK and the BJP accused TVK after that issue of bribe came on the surface against N.B. Veera, we now have a swift action taken by TVK against his expelled leader, N.B. Veera.
7: Lisa, that's right. Not only opposition parties like DMK, BJP and ADMK demanded action against the TVK functionary, even own TVK supporters on social media were tagging Chief Minister C. Joseph Vijay, CMO office, and also Party General Secretary N. Anand, demanding to take immediate action against the TVK functionary. Their argument, TVK supporters' argument on social media, was Veera, who was an independent candidate and won on behalf of won as a Panchayat president, joined Tamilaga Vetri Kalagam party 3 years back. So he is bringing bad name to the party. So he should definitely TVK head top high command should take action against the Veera, as the alleged bribery video went viral on social media. Even BJP, DMK shared the video and strongly criticized Chief Minister C. Joseph Vijay, as Vijay himself very recently gave voice against any sort of corruption or bribes. Now, as we speak, just a while ago only, Chengalpattu District Secretary has released a statement taking action against TVK functionary Veera.
2: Right, Vijay. And of course, we're witnessing this strong action against that expelled leader of TVK by the TVK functionary. Let's also take a listen to what Veera Swami, TVK Panchayat, has to say on the the bribe gate row in Tamil Nadu.
8: சம்பந்தமா பாத்தீங்கன்னா இந்த எனக்கு வந்து செக் வரல சார், இப்பயும் பணம் பரிவர்த்தனை என்கிட்ட இல்ல, எல்லாமே வீடியோ ஜோனல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு சார். எல்லாமே இப்பயும் அவர் பணம் வாங்கணும்னா ஜோனல் கிட்டயும் வீடியோ கிட்டேயே தான் போய் அவர் செஞ்ச வேலைக்கு வந்து பணத்தை அவர் வாங்கிக்கணும். அவரு என்ன பண்றாரு, என்கிட்ட வராரு. ஜேசிபியும் ஏற்கனவே வந்து ஒரு டெத்து சம்பந்தமா ஒரு 25 நாளுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்து கேஷா ஒரு 1.5 லட்சம் வாங்கிட்டு போறாரு சார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 50,000 ரூபாய் வந்து 9ஆம் தேதியும் இன்னொரு 50,000 வந்து ஜிபேலையும் ரெண்டு தவணையா எனக்கு அந்த காசு வாங்கின காசு குடுக்கறாரு. நேர்ல வந்து ஒரு 30,000 குடுக்கறாரு சார். அவரு இதை என்ன சொல்றாரு, நான் ஒப்பந்தத்தை அவர் செஞ்ச வேலைக்கு காசு வாங்கின மாதிரி டிஎம்கேல இதே ஒரு ஒன்றிய சேர்மனும் ஒன்றிய கவுன்சிலர் அருண்குமாரும்
2: All right, so swift action has been taken by the TVK functionary on the bribe gate trial. But on that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. Lots more lined up for you here on NDTV Newsroom.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
8: When markets close, clarity matters as much as speed.
7: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
8: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
7: Join us before every closing bell
8: on India Market Close.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
11: सबका राजा आर्टर मसाला।
12: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
13: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
14: यही है वंदे भारत।
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
15: लॉन्च कंट्रोल।

0: इंफॉर्मेशन जो इनके पास मौजूद है वो टोटल सोशल मीडिया बेस्ड इंफॉर्मेशन है। और आपको पता है ये एआई का दौर है, दुश्मन बेशुमार इसके अंदर काम कर रहे हैं। चंद जो फेक आईडीज के ऊपर पोस्टें लगी होती हैं उनको ही शेयर कर देना, उन्हीं के ऊपर कमेंट्स कर देना, मैं समझता हूं ये छोटी जहनीयत और कच्ची सोच और प्री मेच्योर डिजीज की सिम्टम हो सकती है। आप इसको किसी बेदारी का या किसी शऊर का नाम नहीं दे सकते।
1: Officials say women reportedly make up a significant number of participants in these AI training programs. Security agencies warn that these capabilities could eventually be used for maritime attacks, cyber operations, and AI-powered propaganda campaigns. Officials say Indian agencies are closely monitoring these developments, viewing them as an evolving security challenge. As terror groups adapt to new technologies and new methods, India's security agencies are watching closely. With Mukesh Singer, Bureau Report, NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद।
6: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
7: When markets close, clarity matters as much as speed.
6: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
7: Because the last start today gives you the head start you need tomorrow.
6: Join us before every closing bell
7: on India Market Close.
8: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
9: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
10: Launch control 0 to 100.
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
14: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
15: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
16: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
17: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
18: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
19: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो,
18: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
19: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
18: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: जानते हैं, मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: दे से मॉर्निंग शोज द डे, मार्केट्स ऑफन हैव अदर प्लान्स, बाय मिडडे the story can be very different. That's when the Right Insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12. Your edge for every move.
12: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
13: When markets close, clarity matters as much as speed.
12: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
13: Because the last start today gives you the head start you need tomorrow.
12: Join us before every closing bell
13: on India Market Close.
14: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
15: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
16: अरे मेरे राजा।
17: Buy now, sell immediately.
18: Hold it, boss.
19: Buy now,
20: sell.
21: Hold.
22: Buy now, sell.
23: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
24: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
25: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
26: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट

0: BJP claims PVK functionary to bribe. It has also mocked Vijay. It has accused.
1: They say morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12. Your edge for every move.
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे राजा।
0: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
15: When markets close, clarity matters as much as speed.
0: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
15: Because the last start today gives you the head start you need tomorrow.
0: Join us before every closing bell
15: on India Market Close.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
13: When markets close, clarity matters as much as speed.
12: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
13: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
12: Join us before every closing bell
13: on India Market Close.

0: together.
1: This was strictly related to my president, my constituency, a city called Bhubaneswarpur. There, the mayor was disqualified. Nagaradhyaksha was disqualified.
2: Sanjay Rao.
3: Already, Dr. Ajay Alok has left us with a dialogue from Agnipath saying, "Topi sambhal, kahi ur na jaye." Sameer Chaugankar, Ashutosh, both continue with us. I'm going to ask you straight away. NCP Sharad Pawar, is it going to vote with the government or not? Sameer ji.
4: 100%. जिस तरीके से कल शरद पवार की जो बैठक हुई है जयंत पाटिल के साथ, जिस तरीके से सुप्रिया सुले की कल देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज सुप्रिया सुले ने प्रेस ब्रीफिंग की और बहुत स्पष्ट कहा कि इस पर विचार करेंगे, यह तय है कि शरद पवार के 8 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर सेशन के अंदर बिल आता है तो उसके समर्थन में वोट करेंगे, और ये हो सकता है कि वो वॉकआउट कर जाए। उस स्थिति में भी सरकार का समर्थन मिलने वाला है, और इस मामले में कोई दो राय नहीं। बस ये देखना है कि अभी बातचीत चल रही है कि स्टेट लेवल पर भी इनका समर्थन होगा, क्या दोनों एनसीपी मर्ज होकर एनडीए का हिस्सा बनेंगी, या फिलहाल सिर्फ शरद पवार अभी वॉकआउट कर जाएंगे, उनकी टीम पार्टी वॉकआउट कर जाएगी, या वो लोकसभा के अंदर एनडीए के फेवर में वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तय है कि वो अब एनडीए के साथ जा रहे हैं, किस तरीके से जाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। सेशन में अगर ये बिल आता है तो 100% एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो है वो सरकार का समर्थन करने जा रही है।
3: दोनों साथ में मर्ज होकर के फिर जाकर के एनडीए में भी मिल सकते हैं, बिकॉज कल जो देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग थी उसमें प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे।
4: प्रफुल्ल पटेल भी थे उसके
3: साथ में, सब लोग साथ में
4: टक्कर भी थे उसके अंदर।
3: पर वो तो कह रहे हैं, जयंत पाटिल तो कह रहे हैं कि मेरे कुछ कंस्टिट्यूएंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बारे में अवगत करा गए थे।
4: ठीक है, वो तो मतलब एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इसकी मीटिंग क्यों देर रात को मीटिंग हुई, उसके लिए इनको देर रात मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। ये देर रात की मीटिंग बता रही है कि मीटिंग क्यों पर्पस हुई थी, और सारे मुझे लगता है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे कि स्टेट कौन लीड करेगा, सेंटर में कौन लीड करेगा, क्या सुप्रिया मिनिस्टर सुले मंत्री बनेगी, ये सारी बातें मुझे लगता है समय थोड़ा लगेगा, लेकिन यह तय है कि अब शरद पवार का मन बन गया है और वो एनडीए के साथ जा रहे हैं।
3: Ashutosh, then does it mean we are going to see Supriya Sule accommodated at the center as a minister, with Prafull Patel largely taking care of the party and the alliance at the state? What are you hearing about which way Sharad Pawar's party is headed now?
5: Padmaja, first of all, I will not make any prediction, because you know my experience in the last 12 years is any prediction made is always going to be wrong. So I will not make any prediction at all. So what I read is that I think Sharad Pawar politics is almost over in Maharashtra, and basically he is trying to survive, and not he but basically he is trying to make some ground for his daughter Supriya Sule, because that's the only thing left with him. As practically, if you look at, there are 8 members of parliament from the Sharad Pawar group, but how many of them are going to be with him, that's a big question. And and in my opinion, this Sharad Pawar party will again will either collapse within a few days, a few weeks, or they will merge with the BJP sooner or later. Otherwise they can't survive.
3: In the long run, Sameer ji, अगर वो मर्ज कर भी जाते हैं तो कि पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके जो वोट बैंक है एनसीपी शरद पवार का वोट बैंक, और जब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए थे तो उसका खामियाजा उनको इलेक्शन में भुगतना पड़ा था, तो एक तरीके से इट्स गोइंग टू बी द किस ऑफ डेथ। सो इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ सुप्रिया सुले, इफ वी अज्यूम दैट शी इज गोइंग टू बी अकोमोडेटेड एट द सेंटर, इन द लॉन्ग रन द एनसीपी विल बी ओवर, अगले चुनाव में तो हार जाएंगे ना वो फिर।
4: नहीं, मुझे लगता है कि वो एनसीपी में मर्ज करके जाएंगे, और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जिनका वोटर है, जो बारामती से सुप्रिया सुले सांसद बनती है, वहाँ उनका मराठा वोटर बहुत ज़्यादा है जो शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है वो बीजेपी में मर्ज नहीं करेंगे, वो एनसीपी में मर्ज होगी और एनसीपी समर्थन देने वाली है, और शरद पवार जानते हैं कि अब उनके पास बहुत लंबा राजनीतिक समय नहीं, उनका हेल्थ भी बहुत खराब है, और वो इस बात को भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस के साथ मिलकर वो सत्ता आने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से उद्धव पार्टी की पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, कांग्रेस बहुत कमजोर है, शरद पवार की पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है, तो उन्हें मालूम है कि आने वाले चुनाव में वो सत्ता में आएंगे नहीं, तो कब तक वो खाली अपनी बेटी को सांसद बनाकर बारामती के अंदर बिठा के रखेंगे, और जो डेवलपमेंट के काम करना है उसके लिए आपको फंड नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ में आ गया है कि अब जाना पड़ेगा, और उनको यह भी मालूम है कि जब अजीत पवार चले गए थे एनसीपी के साथ, उसके बाद विधानसभा में इतना बेहतर प्रदर्शन अजीत पवार ने किया, 42-44 एमएलए वो लेकर आए, तो जनता उनके साथ जा रही है, और मुझे लग रहा है कि शरद पवार को लग गया है कि अगर राजनीति में अब सर्वाइव करना है बेटी के लिए तो मुझे एनडीए के साथ जाना होगा। अब कांग्रेस के साथ रहकर कोई भविष्य नहीं है, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर कोई भविष्य नहीं है,
3: सारे लोग ऑन बोर्ड हैं इससे, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस के साथ मर्ज करने के फेवर में हैं।

0: अगर शरद पवार सुप्रिया सुले जाते हैं एनसीपी के साथ मर्ज करने में, तो क्या उसमें भी टूट हो सकती है? कुछ लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं या सब एक साथ ही जाएंगे?
1: नहीं, मुझे लगता है लगभग सारे सांसद विधायक एक साथ जाएंगे। जितेन आवाड़ को दिक्कत जरूर हो सकती है, जितेन आवाड़ जो है वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वहाँ उनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर शरद पवार ने अगर मन बना लिया कि मर्ज कर
0: अगर हसन मुशरफ और नवाब मलिक आ सकते हैं तो जितेन आवाड़ क्यों
1: नहीं, वही जाएंगे। शरद पवार मूड बना लेंगे तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब सारे एमएलए और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ में आ जाएंगे।
0: देखिए, अगर फिराद हकीम जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में, आ सकते हैं यहाँ पे हसन मुशरफ, नवाब मलिक, जिसके के लिए बीजेपी कैंपेन तक नहीं करती है, एंड येट ही कंटिन्यूज टू स्टे विद द पार्टी। But where do the numbers stand right now? Because the next 5 days, not even 5 days, the next 2 days are going to be critical. We are in Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days, you're going to see phenomenal changes likely happen. Now, let's take a look at what is the existing strength of the NDA. Essentially, you've got 298 plus NCPI 20, UBT rebels 6 already joining them. NCP Sharad Pawar, our experts are saying, 8 of them are going to be joining. Now, YSRCP had already voted with the NDA, so 4 of theirs. We are also putting DMK over here, 22. I will tell you why in just a second. But basically, that means NDA is short of only 2 for that magic figure of 360. Now, where does this additional 2 come from? You've got Congress plus Samajwadi Party is at 136. These are the people who are right now very vulnerable. 9 remaining of the Trinamool Congress, Shiv Sena UBT 3, others 25, Aam Aadmi Party 3, JMM 3, Akali Dal 1, and that's Harsimrat Kaur Badal, and 7 independents. सिर्फ दो की और जरूरत है समीर जी।
1: जेएम विल सपोर्ट, उसने बोल दिया जेएम ने कि वो सपोर्ट कर सकता है इसमें।
0: तो बस और
1: शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, हाँ। उसके अरविंद सावंत ने भी बोल दिया है कि हम समर्थन कर सकते हैं इस बिल को, क्योंकि 50% अगर सीटें बढ़ रही है तो हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन करने जा रही है।
0: यानी कि 360 मिल गए
1: बिल्कुल।
0: बट इसमें की एक फिगर है, वन की फिगर,
1: उसमें से कई एब्सेंट भी रहने वाले हैं ना।
0: वन की फिगर वी आर अज्यूमिंग हर आशुतोष इज 22 ऑफ डीएमके। Do you think this 22 is going to cross over and vote with the NDA? And why I'm saying this is because none less than Mr. Chidambaram said it. He really let the cat out of the bag when he said that NCP Sharad Pawar and DMK is being aggressively wooed by the BJP. So they've got 360. Ashutosh.
2: See, Padmaja, we are assuming that the similar will be again table in the parliament. We are not, and the BJP is also conceding the point, because what are the DMK's point? The DMK's demand was that on the basis of population, we will be the sufferer. So, and they were demanding 50%. If the BJP is willing to give 50% formula, is going by the 50% formula, then who should have a problem?
0: BJP was always willing. Amit Shah said it on the floor of the house. He said, "Mujhe ek ghanta DJ mein abhi link karke aata."
2: No, Padmaja, I don't buy that argument, because if BJP was very serious enough, they should have put the things in the bill itself. It's a legal document. The legal document has to be vetted. It has to be seen, because it's not any normal document. So, and if the BJP was so serious about it, they would have brought an amendment in the parliament. They didn't bring the amendment.
0: Very clear that that's going to be an amended bill. So you think nobody, including the DMK, is going to have a problem? Why I'm again asking this is because 1 week ago in Karur, in a rally, Vijay said that delimitation is going to be the death knell for parties in the south, for the southern states. But don't you think the DMK is taking a very big risk if they vote for this bill?
2: Padmaja, see, the delimitation has to be done. The women bill has to be passed. Nobody, in principle, nobody has a problem with the delimitation bill. In principle, nobody has a problem with the women's bill. The problem was that if the population is going to define the number of seats, that's why the South Indian states were very apprehensive about it. And they made it very clear. Now, if the 50% formula is there, then DMK will also not have a problem. Others will also not have a problem. The issue is the BJP is conceding opposition's point. If they are conceding, if they are climbing down, then why the opposition should have a problem?
0: Okay, great. So even the DMK shouldn't have a problem. Now, what I'm interested in is what's happening in the Samajwadi Party. क्या वो abstain कर सकते हैं समीर जी? क्या अभी मतलब 360 plus तो हो ही गए हैं according to this figure, but 360 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, abstention भी हो सकते हैं?
1: अखिलेश यादव समर्थन कर सकते हैं इस बिल का? 11th और बिल्कुल इस बात की खबर है कि
0: अखिलेश यादव अप्रैल में
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि अब अखिलेश यादव जो 50% की बात है उस पर समर्थन कर सकते हैं, और अगले अखिलेश यादव समर्थन नहीं करेंगे तो यह मान के चलेगी समाजवादी पार्टी के काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से एब्सेंट करने वाले पार्लियामेंट के अंदर, और कई कांग्रेस के सांसद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एब्सेंट करेंगे, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है
0: कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
1: यस कांग्रेस के भी करने वाले हैं, बिल अगर आता है इसका तो अपोज कर,
0: कांग्रेस के कहां के सांसद एब्सटेन करेंगे
1: अब ये पता नहीं पड़ रहा है कहां के, लेकिन करने वाले जरूर है, ये आप तय मान के चलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट करेंगे उस दिन।
0: All right, so more breaking news being given here by Sameer Chogankar that there could be, yes Ashutosh ji, do you have something to say about it?
2: No, I disagree with Sameer, he's a dear friend, but I disagree with him.
0: All right, we will not have to wait for very long, like I said, just 4 days left. But from the looks of it, 360 seems to be a given now, which means that delimitation will happen, women's reservation will come in, and we are going to see a completely new election in 2029, and who knows, maybe even one nation, one election. Stay with NDTV for the very latest. Thanks for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.
12: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
13: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
14: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
15: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: Now, over 6 months of a legal battle, Jananayagan is going to be out on the 23rd of July. Satluj streaming storm rages on. Sources have told NDTV that the IT ministry is now mulling action against OTT platform Z5 for releasing the controversial film without CBFC certification. Sources say the government is also considering a certification requirement for films and content on OTT platforms in the future.
1: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना
2: बाल्टी
1: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना पसीना मत बहाओ बर्जर रूफ कूलर सील लगाओ ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: जानते हैं मैं elite matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
12: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
13: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
14: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
15: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर JK Tire.
6: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
11: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
12: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
13: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
14: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
1: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस तेल में।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा।

0: आप अपना देख लो।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड ऑल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now fallen.

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना।

0: where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
7: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
8: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
9: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
10: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
11: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
3: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
4: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
5: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
0: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
1: हमने मांग नहीं की, कोई इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांगे, लिमिटेड मांगे। डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल।
2: On that note, we slip into a very short break. I'm right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
1: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
2: We learn that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
3: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
4: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो
3: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
4: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है उसका हमको अफसोस है।
3: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
4: प्रशिक्षण हम हमारे
3: नहीं मांगेंगे
4: सर।

0: Aisha, he married a small little girl over there. What kind of... See, the thing is, it is for the Muslims, to understand their religion. So the same could have happened if somebody could have spoken the same thing out of Lord Ram or Sita or their religion. We can all have our own views, but we need to understand what can be said as a artistic liberty and what cannot be said.
1: Okay, Ajay Alok, respond.
0: You cannot be provoking...
1: You cannot be harboring people who are going out of their way to hurt people's sentiments.
2: Shubhankar ji, it's not a matter of good oratory, it's just a matter of just remembering history, because history is never mystery. You have been Mamta's ardent supporter, I know, I respect you for that. But let's remember 2007 and let's remember the protest. Who was actively backing at that point of time Taslima Nasreen? Who was standing behind Taslima Nasreen? It was Mamata Banerjee and her workers. Who gave protection to Taslima Nasreen against the CPM government? It was Mamata Banerjee and her workers till the time she was forcibly exiled from Kolkata. This is the truth.
0: This is interesting.
2: And from 2011 till 2015, more than 50 communications she tried doing with Mamata Banerjee, then Chief Minister, asking her if she could come and reside in Kolkata. He was very politely, conveniently pushed away. This is the kind
0: Fantastic.
2: Of appeasement you done. You are no different, but you were no better than left, and that's what she has written in the book. And this is what is the truth. That's what I'm trying to say. I don't know Taslima Nasreen personally. She doesn't have any great feeling for BJP, what you call a typical rightist Hindu party. But what we are doing right now in India is for everyone. Everyone
0: this
2: can
0: is,
2: live.
0: This is
2: no
0: what
2: one
0: I
2: has
0: think.
2: To flee because of the fear of some fundamental organization. May it be any be. But you, when you guys are in government, you give promotions to this kind of radical organization. Like AIMIMM, like All India Minority Council, because the word minority attracts you like a honey, the bee is attracted to honey.
0: Can I come in?
1: Yes,
0: can I come
1: on.
0: In, Ajay?
1: Yes.
0: Mr. Ajay, can I come in now? Okay. Now, Ajay, look, this is fantastic, you know. You've been so selective about the fundamentalists. What code do you have for the people like, people in Karni Sena? You know, they can't even take a simple movie. In terms of, say, artistic liberty or freedom of speech. Do you remember just the name of Jodha Bhai? Just the name of Jodha Bhai. So that is what I'm saying. See, you are so selective. You are so selective
2: that
0: Mamata Banerjee nahi chahiye. But Mamata Banerjee ki wo galti abhi chahiye jo hame suit kare. You can even support Mamata Banerjee where it suits you. So that is the thing. That is the reason why you have taken almost all the TMC. You have taken all the TMC rebels with you. That is the reason, na Ajay Alok. That is the reason why in Bengal you are trying to portray that there is a fraction of TMC who are actually in support but sitting in opposition. But in the center, the same people can sit in your support completely.
1: Okay, hold on. Is this a fair comparison? Samir ji, Shubhankar Bhattacharya keh rahe hain ki agar पश्चिम बंगाल में आपके इदरीस अली थे, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम था, AIMIM था हैदराबाद में, तो आपके लिए हरियाणा में, राजस्थान में करनी सेना भी था. हर किसी के अपने अपने सेंसर्स, अपने अपने ऐसे वैंडल्स होते हैं, तो फिर किसी को भी हाई मॉरल ग्राउंड लेने का हक नहीं है. बीजेपी कैसे मॉरल हाई ग्राउंड ले सकती है तस्लीमा नसरीन को लेकर के?
3: देखिए भैया, मुझे लगता है कि तस्लीमा नसरीन का जो प्रकरण रहा उसको करनी सेना के परिप्रेक्ष्य में नहीं दिखा जा सकता. जिस तरीके से तस्लीमा नसरीन को बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी गई और लाखों रुपए के नाम दिया गया कि गर्दन काट कर लेकर आइए, हम लाखों रुपए देंगे, और एक किताब लिखने पर वो जब भारत आती है उसके बाद उसको कलकत्ता में कुछ दिन रहती है, कलकत्ता के बाद उसकी सेकेंड बुक आती है, उसको कलकत्ता छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद देखिए आज 20 साल बाद वो कलकत्ता जाने की हिम्मत कर रही है. मतलब ये बता रहा है कि शासन बदलने के बाद अब वहाँ कट्टरपंथियों का राज नहीं है, वह कानून का शासन है, और आज को यह भरोसा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वहां पर उसको पूरा प्रोडक्शन मिलेगा. और रविंद्र भवन में 1 अगस्त को कार्यक्रम तस्लीमा नसरीन का कार्यक्रम है, अभी तो 15 दिन उस कार्यक्रम को है, लेकिन वो रविंद्र भवन में जहाँ इतना कल्चरल के लिए माना जाता है उस प्रोग्राम में, वहां वो जा रही है. तो मुझे लग रहा है कि बंगाल और कलकत्ता की एक छवि को बेहतर बनाने की कोशिश है. दुनिया में संदेश जाएगा कि भाई बंगाल के अंदर अब कट्टरपंथियों का शासन नहीं है, अब जनता की चुनी हुई सरकार का शासन है, वो सरकार कट्टरपंथियों की नहीं चलती, रूल ऑफ लॉ से चलती है, वहाँ किसी को भी आने का अधिकार है और सबको सुरक्षा मुहैया करा जाएगी। जो तस्लीमा नसीम सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ जा रही है, अभी तस्लीमा नसीम वहाँ रहने के लिए नहीं जा रही है, एक दिन जाने में उसका इतना विरोध कलकत्ता के लोग कर रहे हैं, समझिए जब वो रहने के लिए कहेगी कि मैं कलकत्ता में रहना चाहती हूँ तब कलकत्ता की स्थिति क्या होगी। और मुझे लग रहा है कि अब शिवेंद्र की सरकार है वो कलकत्ता में बहुत आराम से।
1: I just want to underscore the point that it's not as if rule of law cannot be maintained if the states wants to maintain it. Today you have the same state, the same people, the same population in West Bengal, and yet the same author is being allowed to come back. Why couldn't the TMC or the CPM also ensure her safety in the state? It's entirely up to the state. If you want to give a free run to the rioters, it will happen. If you want to keep the rioters in check, it will happen. It's only about the will of the state, Shubhankar Bhattacharya.
0: Exactly. I completely support you, Padmaja. But at the very same time, I want to pose a question to the gentleman who was speaking earlier, that when he talks about the radicals, you know, when he talks about Kattarpanth, I'm just asking a simple question, that if a single line is being spoken about the relationship of Lord Ram and Sita, and if it is being, you know, if we speak against, if we stand strongly against the person who has written it, will you call us the Kattarpanth?
1: Sameer
0: ji, if I have just posed a threat to a person who is writing something very, you know, wrong about the relationship of Lord Ram and Sita, so if I oppose it, will I be considered as a Kattarpanth, as a radical?
1: Sameer ji.
3: देखिए कट्टरपंथ की जब मैंने कहा कि तस्लीमा नसीम को लेकर जिस तरीके से बंगाल के लोग मुस्लिम कम्युनिटी ने जिस तरीके से उनका विरोध किया था, क्या किसी हिंदू धर्म के अंदर किसी ने इस तरह से विरोध किया है? जिस करणी सेना का इन्होंने जिक्र किया, जिसका इन्होंने दीपा मेहता का किया, दीपा मेहता के समय जब यह घटना घटी थी उस समय राष्ट्रीय सेवक संघ ने उसका विरोध किया था। मुझे अच्छे से याद है कि संघ ने कहा था कि इस तरीके से हमला और हिंसा नहीं होना चाहिए, उनको अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है। क्या जब तस्लीमा पे इस तरह से हुआ तो किसी मुस्लिम स्कॉलर ने इस बात का जिक्र किया था कि तस्लीमा नसरीन पे इस तरह से हमले ना हो, इस तरह से उसकी जान की कीमत ना लगाई जाए? किसी ने कहा था कि कलकत्ता में रहने का अधिकार है?
1: नहीं, बाय द वे, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट वन थिंग, शुभांकर भट्टाचार्य, लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। इफ टुडे समबडी मेक्स एन अनसेवरी रिमार्क अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड राम एंड हिज वाइफ और एनीवन एल्स, बाय द वे, डू यू नो दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग पीपल लाइक स्वामी प्रसाद मौर्य, इंक्लूडिंग पीपल लाइक तस्लीम अहमद रहमानी, दे हैव मेड अनसेवरी रिमार्क्स अबाउट द शिवलिंग, पीपल हु हैव सेड दैट लॉर्ड कृष्णा वॉज लाइक अ मोलेस्टर, ही हैज टेकन अवे द क्लोथ्स ऑफ सेवरल गोपीज, दे आर स्टिल रोमिंग अराउंड इन आर कंट्री, दे मे हैव अ फ्यू FIRs, बट इफ somebody was to put a bounty on their head, everyone will stand up against it, and everyone should stand up against it, because in a democracy you cannot allow anyone to take the law
0: but
1: in their hands.
0: You
1: cannot allow anyone to stand there and say that this person should be beheaded, or this person should have their face blackened, or this person should be garlanded with shoes, and I give you 50,000 rupees for it. That's the simple answer. Ashutosh,
4: मुझे लगता है कि दारा सिंह का मामला ज्यादा पुराना नहीं है। अभी ये 26 साल से जेल में है, ग्राहम स्टेन्स के साथ जो किया, वो किस दल के सदस्य थे? वो
1: सर बजरंग दल के थे, इसलिए तो वो गए जेल, गए ना वो, और 26 साल से वो जेल में रहे और उनको रहना चाहिए।
4: पद्मजा, डोंट गेट इनटू दैट। किस संगठन के लोग थे जिन्होंने जिंदा जलाया ये? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हु वाज बाबू बजरंगी? किस संगठन के सदस्य थे वो? किससे किससे उनका जुड़ाव था
1: बताइए डॉक्टर राजा आलोक।
4: माया कोटनानी, माया कोटनानी किससे संबंधित था उनका?
1: डॉक्टर राजा आलोक, एंड जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल आवर व्यूअर्स हु मे नॉट बी फेमिलियर, दारा सिंह वाज कन्विक्टेड एंड दारा सिंह वाज जेल्ड फॉर बर्निंग अलाइव अ क्रिश्चियन मिशनरी कॉल्ड ग्राहम स्टेन्स इन ओडिशा। ही वाज बर्नड अलाइव अलोंग विद हिज टू सन्स व्हाइल ही वाज स्लीपिंग इन दैट स्टेशन वैगन, एंड सब्सिक्वेंटली फॉर 26 इयर्स ही हैज बीन जेल्ड। यस डॉक्टर राजा आलोक, बट यू हैव प्लेंटी ऑफ फंडामेंटलिस्ट एज वेल। डॉक्टर राजा आलोक,
2: I may agree. Okay, let's take it like that. Dara Singh is in jail. Babu Bajrangi, for whatever the matter, they are facing all the legal challenges. Can you tell me, Ashutosh, if any Hindu organization raised their voice for them? Did anyone raise the bounty on them by, if you do this, we'll give you 5 lakhs, or if you save them, we'll give you 10 lakhs? You remember Satnik versus, all of you? What happened? After 30 long years, the boy was not even born. And he made a almost murderous attack on Salman Rushdie. After 30 years, when Satanic Verses was written, that guy was not born. That's what you call radicals. That's what you call fundamentalists. But you know what is your problem of Ashutosh, yours and Shubhankar? You are a part of Congress ecosystem. Shubhankar is there in TMC. The very love of 30% and 20%

0: स्थिति में भी सरकार का समर्थन मिलने वाला है और इस मामले में कोई दोहराई नहीं, बस ये देखना है कि अभी बातचीत चल रही है कि स्टेट लेवल पर भी इनका समर्थन होगा, क्या दोनों एनसीपी मर्ज होकर एनडीए का हिस्सा बनेंगी या फिलहाल शिव शरद पवार अभी वॉकआउट कर जाएंगे, उनकी टीम पार्टी वॉकआउट कर जाएगी या वो लोकसभा के अंदर एनडीए के फेवर में वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तय है कि वो अब एनडीए के साथ जा रहे हैं, किस तरीके से जाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। सेशन में अगर ये बिल आता है तो 100% एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो है वो सरकार का समर्थन करने जा रही है।
1: दोनों साथ में मर्ज होकर के फिर जाकर के एनडीए में भी मिल सकते हैं, बिकॉज कल जो देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग थी उसमें प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे,
0: प्रफुल्ल पटेल भी थे उसके
1: साथ में, सब लोग साथ में
0: मीटिंग भी थे उसके अंदर,
1: पर वो तो कह रहे हैं, जयंत पाटिल तो कह रहे हैं कि मेरी कुछ कंस्टिट्यूएंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके बारे में अवगत करा गए थे।
0: ठीक है, वो तो मतलब एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इसकी मीटिंग क्यों देर रात को मीटिंग हुई, उसके लिए उनको देर रात मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी, या देर रात की मीटिंग बता रही है कि मीटिंग क्यों पर्पस हुई थी, और सारे मुझे लगता है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगे कि स्टेट कौन लीड करेगा, सेंटर में कौन लीड करेगा, क्या सुप्रिया मिनिस्टर सुले मंत्री बनेगी, ये सारी बातें मुझे लगता है समय थोड़ा लगेगा, लेकिन ये तय है कि अब शरद पवार का मन बन गया है और वो एनडीए के साथ जा रहे हैं।
1: Ashutosh, then does it mean we are going to see Supriya Sule accommodated at the center as a minister with Prafull Patel largely taking care of the party and the alliance at the state? What are you hearing about which way Sharad Pawar's party is headed now?
2: Padmaja, first of all, I will not make any prediction because, you know, my experience in the last 12 years is any prediction made is always going to be wrong. So I will not make any prediction at all. So what I read is that I think Sharad Pawar politics is almost over in Maharashtra, and basically he is trying to survive, and not he but basically he is trying to make some ground for his daughter Supriya Sule, because that's the only thing left with him. As practically, if you look at, there are 8 members of parliament from the Sharad Pawar group, but how many of them are going to be with him, that's a big question. And and in my opinion, this Sharad Pawar party will again will either collapse within a few days or few weeks, or they will merge with the BJP sooner or later. Otherwise they can't survive. But and I think
1: In the long run, समीर जी, अगर वो मर्ज कर भी जाते हैं तो कि पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके जो वोट बैंक है एनसीपी शरद पवार का वोट बैंक, और जब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए थे तो उसका खामियाजा उनको इलेक्शन में भुगतना पड़ा था, तो एक तरीके से इट्स गोइंग टू बी द किस ऑफ डेथ। सो इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ सुप्रिया सुले, इफ वी अज्यूम दैट शी इज गोइंग टू बी अकोमोडेटेड एट द सेंटर, इन द लॉन्ग रन द एनसीपी विल बी ओवर, अगले चुनाव में तो हार जाएंगे ना वो फिर।
0: नहीं, मुझे लगता है कि वो एनसीपी में मर्ज करके जाएंगे, और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जिनका वोटर है, जो बारामती से सुप्रिया सुले सांसद बनती है, वहाँ उनका मराठा वोटर बहुत ज़्यादा है जो शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है वो बीजेपी में मर्ज नहीं करेंगे, वो एनसीपी में मर्ज होगी और एनसीपी समर्थन देने वाली है, और शरद पवार जानते हैं कि अब उनके पास बहुत लंबा राजनीतिक समय नहीं है, उनका हेल्थ भी बहुत खराब है, और वो इस बात को भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस के साथ मिलकर वो सत्ता आने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से उद्धव पार्टी की पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, कांग्रेस बहुत कमजोर है, शरद पवार की पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है, तो उन्हें मालूम है कि आने वाले चुनाव में वो सत्ता में आएंगे नहीं, तो कब तक वो खाली अपनी बेटी को सांसद बनाकर बारामती के अंदर बिठा के रखेंगे, और जो डेवलपमेंट के काम करना है उसके लिए आपको फंड नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ में आ गया है कि अब जाना पड़ेगा, और उनको यह भी मालूम है कि जब अजीत पवार चले गए थे एनसीपी के साथ, उसके बाद विधानसभा में इतना बेहतर प्रदर्शन अजीत पवार ने किया, 42-44 एमएलए वो लेकर आए, तो जनता उनके साथ जा रही है, और मुझे लग रहा है कि शरद पवार को लग गया है कि अगर राजनीति में अब सर्वाइव करना है बेटी के लिए तो मुझे एनडीए साथ जाना होगा, अब कांग्रेस के साथ रहकर कोई भविष्य नहीं है, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर कोई भविष्य नहीं है।
1: सारे लोग ऑन बोर्ड हैं इससे, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस के साथ मर्ज करने के फेवर में हैं। अगर शरद पवार सुप्रिया सुले जाते हैं एनसीपी के साथ मर्ज करने में, तो क्या उसमें भी टूट हो सकती है, कुछ लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं या सब एक साथ ही जाएंगे?
0: नहीं, मुझे लगता है लगभग सारे सांसद विधायक एक साथ जाएंगे। जितेन आवाड़ को दिक्कत जरूर हो सकती है, जितेन आवाड़ जो है वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वहाँ उनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर शरद पवार ने अगर मन बना लिया कि मर्ज कर
1: अगर हसन मुशरफ और नवाब मलिक आ सकते हैं तो जितेन आवाड़ क्यों
0: वो वही जाएंगे, शरद पवार मूड बना लेंगे तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सारे एमएलए और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ में आ जाएंगे।
1: देखिए, अगर फिराद हकीम जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में, आ सकते हैं यहाँ पे हसन मुशरफ, नवाब मलिक, जिसके लिए बीजेपी कैंपेन तक नहीं करती है, एंड येट ही कंटिन्यूज टू स्टे विद द पार्टी। But where do the numbers stand right now? Because the next 5 days, not even 5 days, the next 2 days are going to be critical. We are in Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days, you're going to see phenomenal changes likely happen. Now let's take a look at what is the existing